देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं देख

0: तेरे लिए मैं देखिए लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: से घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी
0: और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

आए गंभीर फूलना धरती और बताया क्या क्या लाए। शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

ढोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ ताहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन

नहीं मुझे कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: साफ़बान
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ़बान, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
0: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: वो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे,
1: कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत।

नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: साल
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
0: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की थी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की थी से अदावत नहीं मुझे।
1: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।

की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं।

0: चुके अच्छे बुरे को देख चुके, कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख चुके, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन के दिल से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के दिल से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच से झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: ना झोल है ए जी हम ना कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।

की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: देखे अच्छे बुरे को देखे कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखे अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की।

एक मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच से झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की दिल से अदावत नहीं मुझे।

0: प्यार ये संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।

0: कर ये संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेल धन्य है, धन्य जी का
0: अमर है।

0: स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य मुंडे।

0: संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।